0: कि एक समय तानों में जो बाहर जो माता से रिता थी फल नो नियो बोले अफेट जो वाचा साउदी बाकुम्बा से नियो पूजा बत्ती में पिसल
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.